आजे निखा अहलिया द चुनी गो खुद आशी बेहद जी चुनते गो ए आद होत ना ए या तो होती ना और खुद ज्यादा नी गो खुद आओ ए या आज या ना तहने तो आदो ए यहाँ अस्तो ना तहने के ए या तो नगे इंडोनेशिया हो लिए सुना इस अयुदात एगो पेच आंद अल्टे चुनले सह ए या खुद एगो खोदा सिंग अहू ए याद बे ना अल्टाको एम एशि ए या फेरी ए या तेने एशि ए या आज ये ओसंदे तो तीर ए या 271 दे ए या तिल सा नीला अस्तो एशिन गई चाव होलिए ती आईलैंड स आगो ए खनास आगे तहो ती दाने खो ए हसल ए गो इन दहा लाई ए या खुद ए गो खुद हो या नीला अस्तो था हिजने स्टेशन रेस्क्यूअर तन लेनी तो ए आज से सा ए आ खो ए सा या तहो नी जी गो तई सा शिन ए तई ला गो सा आज गो हुत ए गो सिल सा तहो तीस जा ता नीला अस्तो इंडोनेशिया ती आज खिन सा गो सा तस जा द सेकंड लार्जेस्ट सिटी दे स्नी गो सरबाया हो दिया चन गे ईस्ट जावा अख्वाशिंग हो गए गो ए गए आज एशिन लाई खुद आ ये दाल दे है तो जो ए 232 दा ए खुद ए गो ए या आज ए बे ऑल दा हो 39 क्रू मेंबर्स गो शी अ खुद ज़्यादा नीला तो को हटे बनी ना ए या आज दिल था के ए या आज तो पाहो जिंदा नो खुद आ ए या आज या तहल ने ला तो दिशिंग सना ए ना हल लिंगो खुद ए गो बे ए या तहल का कुन ले ना न सचो खुद आ बे इन दा दिल ता हो कौन चुदा ए तो ए रे या तो खुद ए गो ना तहने ना ना तो दी ए या ओपरा विनफ्री वो ये गो अस्तन ना कह से जने ते ने एन लिंगो ए या दी ए या ने गए थोयो ना द अफ्रीका हो ये द आदि शिं ए या ओल्ट्रा था ए या आ ए ये लागो ओल्ट्रा ए ये लोसंदे तानी ला तो इत ओ हयूत ए के आज द ओल्ट्रा गे अब जे अंद हस्त इत ओ लाइन द ब मदो ब जे ब बेस द ए या तो द ला द आज द बे अंडर प्रिविलेज दे ने खुद आ शिं तन लो ए के ए ए या आज ओल्ट्रा ये ए या दी कत ना ना ना खद ओ या तदत ओल खतनी गो खुद आओ ए या आज ये खत जी ला तो अखों दी ओल था के ए या ओपरा विनफ्री लीडरशिप एकेडमी फॉर गर्ल्स जी वल ये 2007 ये ता आ अलियां दे ता नी ला तो अखों इता ए या दी आज प्रेसिडेंट लीन दे तो दी ए हस्तीन जो ए बिके ए या हस्तीन फॉर्मर साउथ अफ्रीकन अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला वल ये गो ए खुद आशी आदे ये खाजी को ती ए यहाँ होत आज एक असा हो उत ए गो हो आ एक अद ए या अत एक है ए बिंदा उल्ट खा तो ले तो अ खुद आ ए खाज आ तो ले खा नो जो ए खुद जा जो ए या लाई अत एक है ए या बेस तो तब अत आते नो ता इर उल्ट खा है कि ता उत अत नो बनी ना ए आज खुद आशी ती ओपरा विनफ्री वो ये बेसो शीन चैरिटेबल फाउंडेशन बे हो लोंग बेसो ये ता जे को शीन ए आज उल्ट्रा के आ ते ये ला तो शीन हो ता ए आज बेसो के बे उल्ट्रा ये लो संदे तो अखों ए हो जा ता नीला अखों ना सो ए या हो ते शीजो ए या चो बे इस गते आ गुन ले हा लो ता ता दी जोहानेसबर्ग वो ये है ना सा हो जो के ए या ती उल्ट्रा के या ती ने गए आ आज ता इनिश डिपार्टमेंट ऑफ एकेडमी वो ये ए आज को ए पाद तो आ सब बिन ए या आज ता ये लिए तो अखों आ ए या आ तो नीश का नींदे अखों ए या ती आज कद ए या ती उल्ट्रा के ए यहाँ आज असा ए ना खा जी ए आज खुद आओ ए या तदन शिकार तो लेनी गो खुद आओ ए या आज ये खा जी ला तो ती असने खुद यूनाइटेड स्टेट्स का होतो अंदो ए या ती असने को निच इनाल किधर भी ये चे ए या खुद ए गो नाल किधर ती ओपरा विनफ्री वो ये गो बिजे ए दे या तो खुद ए गो दे या तो ती असने पाना हने तो आदो ए या तो नगे लंदन हो ये दे ना तहने नगे आइसलैंडिक दाल ये गो कोस्ट गार्ड्स दन लिनी तो